0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रूदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
4: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब
5: फेथ या विश्वास वो मिरेकल्स कर सकता है जो आदमी की सोच से भी बाहर है और मैं ये बेहद फर्मली मानती हूँ। नमस्कार आदाब सामीन, इसी दुआ के साथ कि आप सब सेहतयाब हैं, खैरियत से हैं और खुश हैं, मैं प्रीत चाहूंगी इजाजत आज के शो की शुरुआत करने की फिर से एक सच्चाई के साथ। जोनाथन एंटनी ने अपनी किताब निगलेक्टेड बट डिफीटेड द लाइफ ऑफ अ बॉय हु नेवर न्यू अ मदर्स लव में लिखा है कि हमेशा हर चीज जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग हो। कभी कभार कुछ रिश्ते इसलिए भी दाखिल हो जाते हैं आपकी जिंदगी में ताकि वो आपको सही और गलत में फर्क समझा सके, अच्छे और बुरे में फर्क बता सके, ताकि आपको खुद ही से प्यार करना सिखा सके, ताकि वो आपको कुछ समय के लिए ही चाहे पर अच्छा महसूस करा सके, या कुछ अरसे के लिए सहारा और किनारा बन जाए आपका जब आप लड़ रहे हो जमाने से और खुद ही से। हर इंसान जो आपकी जिंदगी में दाखिल होता है वो जरूरी नहीं है कि परमानेंटली आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर वो किसी मोड़ पर भी किसी वजह से भी आपकी जिंदगी से जाना चाहे तो उन्हें जाने दें, गुस्से के साथ नहीं, प्यार के साथ, शुक्रगुजार होकर फॉर व्हाटएवर दे हैव गिवन अस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की तारीख की और इस तारीख से जुड़े फैक्ट्स की। आज यानी 17 मई को जन्मदिन है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने खेला एज लेग स्पिनर यानी बीएस चंद्रशेखर का। भगवंत चंद्रशेखर को नेम किया गया था एज विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 1972। इसके अलावा आज जन्मदिन है कैनेडियन पॉलिटिशियन जो मेंबर थे प्रोविंशियल पार्लियामेंट के फॉर द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो यानी हॉवर्ड हैम्पटन का। साथ ही साथ आज यानी 17 मई को डेथ एनिवर्सरी है इंडियन पोएट, इंग्लिश प्रोफेसर, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट फिक्शन राइटर जिन्होंने इंग्लिश और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है यानी टी के दोरास्वामी की। उनके एशियन मेमोरियल अवार्ड फॉर तमिल पोएट्री के साथ नवाजा गया था 1983 में। इसके अलावा आज ही डेथ एनिवर्सरी है इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने द लीला पैलेसेस, होटल्स और रिजॉर्ट्स की स्थापना की थी यानी कि सीपी कृष्णन नायर की। 2010 में कैप्टन नायर को पद्म भूषण के साथ सम्मानित किया गया था। इन एडिशन टू ऑल दिस आज यानी 17 मई को दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसका मेन मोटिव है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ सोसाइटल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरनेट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिवीजन कैसे होती है। करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर। तो बचे कितने? करीबन 12 साल। सिर्फ 12 साल, ये ही टाइम, ये ही साल हैं जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें। और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग? वेल, सोच कर देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: अच्छा जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का. कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क सैलरी इतनी कम क्यों. पर ना एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न. जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम. तो जी इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें काम को दिल लगा कर सीखें तो सैलरी नहीं तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है.

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, Am I welcome in the family? क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ? और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खास कर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

एजुकेशन की बात हो, तालीम की बात हो और किताबों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। किताबें कागजों पर जिंदगी के मायने छपे हुए, किताबें जो हमें सलीका सिखाती हैं जिंदगी जीने का। और कोई आपके साथ हो ना हो, किताबें हमेशा आपका साथ देती हैं। उदास हो तो खुश कर देती हैं, घर के एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे दुनिया की सैर करा देती हैं। अच्छा, अप्रैल में बीबीसी बिग रीड ने एक सर्च शुरू की बेस्ट लव्ड 100 नॉवेल्स की। द वन विच वॉज मोस्ट लव्ड वॉज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। दूसरे नंबर पर जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है आज भी यूके में, वो है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 100 किताबों में इसकी जो लिस्ट है उसमें से हमारे इंडियन राइटर्स भी पीछे नहीं है। नंबर 55 पर स्टैंड स्टॉल विक्रम सेठ्स बुक अ सूटेबल बॉय, एंड एट नंबर 85 इज अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ

ना देवाना यारा कुम बन ना देवाना देला कुम दा जमाना देला हथा विच लैके आरिया तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारिया कौन तेरे अथरू पूंजू तेनू कौन संभालू अड़िया चन्न तेरे।

समा ही ना जावे है लंगनी वारी वारी नैन जदों मिलदे उदों आपां दोवें जांदे संगनी दिल करे बाहों फड़ रोक ला समा